जानते हैं कि वहाँ घंटों थका देने वाला इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो घर से निकलते वक्त अपने बच्चों के सर पर हाथ फेरना और दरवाज़ा बंद करते वक्त अपना ख्याल रखना कहना कभी नहीं भूलते, क्योंकि ज़िंदगी इन्हीं छोटी छोटी तफसीलात के सहारे खामोशी से मुज़ाहमत कर रही है। बाज़ औक़ात बिजली चली जाती है और घंटों नहीं आती, लेकिन इस घुप अंधेरे में भी आपको घर के किसी कोने में पढ़ते हुए एक नौजवान पर नज़र पड़ जाती है। वो अपने सामने रखी किताबों और नोट्स को एक मोमबत्ती के शोले या मोबाइल फ़ोन की हल्की रोशनी में पढ़ने की कोशिश करता है। कुछ लोग इसी फ़ोन के ज़रिए सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उस वक्त आपको ये समझ आती है कि कुछ रोशनियाँ बिजली जाने पर भी नहीं बुझती। फिर अचानक किसी गली से बच्चों की हंसी और शोर की आवाज़ें गूंजती हैं। दो पत्थरों को गोल पोस्ट बनाकर वो बच्चे मिट्टी और धूल के बीच एक फटी हुई गेंद के पीछे भाग रहे होते हैं। दुनिया की भारी तरीन अखबारी सुर्खियों के नीचे भी बचपन अपने लिए खेलने की एक छोटी सी जगह ढूंढ ही लेता है। फलस्तीन का सबसे बड़ा राज भी इसी बात में छुपा है। लोग जिंदगी के मामूलात को मुकम्मल तौर पर खो देने से बचने के लिए अपनी रोज़मर्रा की आदतों को मजबूती से थामे हुए हैं। सुबह का नाश्ता, ख़ानदान के साथ रात का खाना या बालकनी में पी जाने वाली चाय की एक प्याली इंसान के लिए वतन की आखिरी बची हुई ज़मीन बन जाती है। शाम के वक्त गलियों में एक बार फिर रौनक लौट आती है। कमी और तंगी के बावजूद घरों में पकने वाले खाने की खुशबू खिड़कियों से निकलकर गलियों में फैल जाती है। वो खाना अक्सर बड़े दस्तरखानों पर हमसायों के साथ बांटकर खाया जाता है। फ़िलिस्तीन में बांटना सिर्फ एक पुरानी रवायत नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर ज़िंदा रहने का एक तरीक़ा है। शाम ढले गज़ा में आप ख़ानदानों को समंदर की तरफ जाते हुए देखते हैं। वो अपने इर्द गिर्द की महसूर दुनिया को चंद मिनटों के लिए भूलने के लिए बाहर रूम के ठंडे पानी में अपने पाँव डाल देते हैं। बच्चे लहरों से खेलते हैं, जबकि बड़े उफक की लकीर पर नज़रें जमाए देर तक देखते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए उफक की तरफ देखना ही आज़ादी का सांस लेना होता है। इसी दौरान किसी गली से अचानक खुशी की तालियां और किलकारियां गूंज उठती हैं। इस बार यह आवाज़ किसी गम की खबर पर नहीं, बल्कि एक शादी के लिए बुलंद हुई है। बिजली ना हो, गलियां अंधेरे में डूब जाएं, या ये मालूम ना हो कि कल उनके साथ क्या होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो शादी फिर भी होगी और रवायती रक्स फिर भी पेश किया जाएगा, क्योंकि लोग मुस्तकबिल पर अपने ईमान को अपने ही गीतों के ज़रिए ज़िंदा रखते हैं। फ़िलिस्तीन को समझने का मतलब सिर्फ आसमान से गिरने वाले बमों को गिनना नहीं है। फ़िलिस्तीन को असल में समझने का मतलब यह है कि उस मलबे और पत्थरों के ढेर के दरमियान भी ज़िंदगी का दिफा करने से पीछे ना हटने वाले इंसान को दिल की आँख से देखा जाए। दुनिया की नज़र फ़िलिस्तीन शायद सिर्फ एक उदास खबर की सुर्खी हो, लेकिन ठीक उसी सेकंड में एक तबाहशुदा घर के छोटे से बावर्ची खाने में कोई अब भी चाय दम कर रहा था। एक कौम को सीधा और मजबूत खड़ा रखने वाली चीज़ बिल्कुल यही है, हर तरह की तबाही के बावजूद ज़िंदगी का ज़िद के साथ जारी रहना। अगले हिस्से में हम उन लोगों की कहानियाँ सुनेंगे जिन्होंने इस ज़मीन पर आज़ादी की सबसे भारी कीमत चुकाई है। आज़ादी के कैदी के उन्वान पर मबनी अगली किस्त में मुलाकात होगी।

तुर्की का फखर जंगी तैयारा कान अपने नए रूप में सामने आ गया है। पहले से छोटा, ज्यादा फुर्तीला और ज्यादा जदीद, दो नए प्रोटोटाइप तैयार हैं। दुश्मन की रेडार पर एक शहद की मक्खी जितना छोटा नजर आने वाला यह देव हैकल तैयारा 2029 में आसमानों पर राज करेगा। कान के नए प्रोटोटाइप्स और तमाम तफसीलात अब यहां मौजूद हैं। आज हम तुर्क दिफाई सनत के फखर के मंसूबे कान की ताजा तरीन पेशरफ्त शेयर करेंगे। अपनी पहली परवाज से पूरी दुनिया को हैरान करने वाले इस पांचवी नस्ल के स्टील्थ जंगी तैयारे के नए मॉडल सामने आए हैं, जिनमें अहम तब्दीलियां नुमाया हैं। हम आपके साथ सरताज अहसान का TRT न्यूज के लिए लिखा गया तफसीली जायजा शेयर कर रहे हैं। अगर आप तैयार हैं तो आइए आसमान के इस नए सितारे की कहानी मिलकर सुनते हैं।

शामिल है जिसका मकसद सुपरसोनिक रफ्तार पर हवा के दबाव को कम करना है। कान के नए मॉडल में पीछे के लैंडिंग गियर्स ज्यादा चौड़े और बाहर की तरफ खुले हुए नजर आते हैं। इसके अलावा बिल्कुल पीछे नस्ब दोनों इंजनों के दरमियान का फासला भी पहले मॉडल के मुकाबले में बढ़ा दिया गया है। कान के कॉकपिट में तुलगार नजर आ रहा है। बारीकबीन आंखों से एक और अहम डिटेल नहीं छुप सकी और वो है कॉकपिट के अंदर का मंजर। असल सान का तैयार करदा तुलगार हेलमेट सिस्टम कुछ तस्वीर में देखा जा सकता है। ये जदीद सिस्टम पायलट के हेलमेट के अंदर मौजूद शीशे यानी विजोर पर परवाज और मिशन की तमाम जरूरी मालूमात डिजिटल तौर पर जाहिर करता है।

सब इस्तेहकाम पर मरकूज एक नए जियो इकोनॉमिक मॉडल की तरफ मुंतकिल हो रही है। ताहम ये वसी पानी की तेज रफ्तार तरक्की अपने साथ संगीन मालियाती साथ खतरात भी ला रही है। रेगुलेटर्स और प्रोड्यूसर्स जो बरसों से आजाद मंडी आजाद तजारती नुकता नजर के साथ काम करते थे, अब इन बेकाबू लागत में इजाफे पाबंदियों के नतज का सामना कर रहे हैं। यहाँ माली इंतजार का खतरा भी पेश पेश है। अगर हम एक बैटरी पैदा करिंदा चिप फ्राहम करने जोग्राफी सियासी बहरान की वजह से काम बंद कर देता है तो ये डोमिनो असर को मुतहरिक कर सकता है, जिससे दुनिया भर में दर्जनों मोटरसाज फैक्ट्रियां हजारों जेली मैन्युफैक्चरर्स बंद हो सकते हैं। इस शो में अचानक तब्दीली से इंजन के रवायती पुर्जे तैयार करने वाले हजारों छोटे कारोबारों के दिवालिया होने का खतरा है, जो इस चीज को बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। इन सब के नतीजे में बेरोजगारी उरूज पर पहुंच जाएगी। तो ये नई सरमायाकारी की हिकमत अमली कितनी पायदार काबिल इत्तमाद है, हमें यहाँ पर हम आहंगी के म्यार पर भी सवाल उठाना चाहिए। माज़ी में किसी एक फ्राहम करिंदा या किसी एक मुल्क पर इन्हिसार करने के भारी अखराजात ऑटोमोबाइल फर्मों की निगरानी के खिलाफ स्ट्रेटेजिक अंधापन को बेनकाब करते हैं। सरमायाकारी का माहौल फिलहाल इलेक्ट्रिक और खुद मुख्तार गाड़ियों के बारे में काफी पुरजोश दिखाई देता है। हम सार्फीन मकानी माशरे अचानक मुंतकली की वजह से होने वाले ज्यादा अखराजात न काफी इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरी तरह खुश नहीं है। यूरोप में कुछ कायमशुदा ट्रेड यूनियंस लेबर यूनियन के रहनुमा दूर दराज की जोग्राफियों या सॉफ्टवेयर पर मबनी नए तश्कील शुदा कंसोर्शियम में पैदावार की तेजी से मुंतकली के बारे में गहरी तशवीश रखते हैं। इसकी वजह यह है कि रवायती सनत के बरक्स इस नए तकनीकी सरमायाकारी ग्रुपों के लिए पैदावारी तनसीबात माशरती विरसा या रोजगार का जरिया नहीं है, बल्कि वो डिजिटल असासे हैं जिनसे मुनाफे के अमल के जरिए इस खेल से बाहर हो जाएंगे। सामिन, आज हमने हरे मैदानों से सड़कों तक फैलने वाली फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन लाइंस के किस तरह एक जड़ी ज्योग्राफी मीशत की तजर्बाकार की माहिर तैयार करने का जायजा लिया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब सिर्फ इंजन की ताकत आराम और आयश से ताल्लुक नहीं रखती, ये नायाब जमीनी अनासर सॉफ्टवेयर का गलबेस फारती चालबों आलमी तजारती जंगों का मजबू है। सप्लाई चेन में ये बुनियादी तब्दीली रुकावट रवायती सनती इदारों जवाबत को मतरूक करने की सलाहियत रखती है। अगर खाम माल या टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा कंसोर्शियम आलमी जो बैटरी नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है तो खेल के असूल अब आजाद मंडी की मईशत नहीं बल्कि इन अचारातारियों इनके पीछे बड़ी ताकतों के जरिए तय किए जाएंगे। डिजिटल आलमी दौर से लाख खतरा की तरह सनती दुनिया ने अपने नई ताकत के महरकात कमजोरियों को जन्म दिया है। साम इसके साथ हमारा आज का सिलसिला प्रोग्राम इख्तिताम पसीर होता है। आइंदा हफ्ते दोबारा पेश खिदमत होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान इमरान अपुल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जुग्राफियाई मईशत।